भगवान प्रकट हो गए जिस दिन की तलाश थी, जिस तिथि की तलाश थी कि हमारे राम आएंगे, तब तो महाराज कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। कहा कि कार्य क्या है? अरे बेटे की शादी नहीं हो रही है, कोई अच्छी सी बहू मिल जाए, बस उसके बाद में शांत चित्त होकर के अपने जीवन को व्यतीत कर लेंगे। प्रयत्न किए, यत्न किए, धीरे धीरे धीरे धीरे आपके बेटे की भी शादी हो गई, आप शांत हो गए क्या? भगवान के परमार्थ पथ पे लग गए क्या? कहा कि नहीं। क्या कहें, इस बुढ़ापे अवस्था में भी मैं सोच रहा हूं, बेटे का भी एक बेटा हो जाता ना, हम अपने नजरों से देख लेते। इस संसार में इच्छाएं और बढ़ती जा रही है, बेटक बेटे का भी बेटा हो जाता तो हम बड़े खुश हो जाते, आनंदित तो हो जाते। परमात्मा की कृपा हुई और उससे भी एक संतान प्राप्त हुआ। अब उस संतान में इतने ओत्र पोत लग गए कि अब तो पिता के पास कम लेकिन बाबा जी के पास में अधिक रह रहा है, बाबा जी के पास अधिक रह रहा है, और ममत्व बढ़ते चले गए, और ममत्व बढ़ते चले गए। इच्छा हुआ ये बड़ा हो जाता और हम अपने नजरों के समक्ष यदि इसकी शादी देख लेते ना, जोड़ी में देखना चाह रहे, तब तक आपकी उम्र जो है कितनी ढल गया, उम्र जो है बीतती जा रही है, और पोते का विवाह देखने के लिए ललाहित रहते। एक बार भी जुबान से आपके राम नाम नहीं आता, कृष्ण नाम नहीं आता, माता रानी का नाम नहीं आता। संसार में जितने भी ये ओत प्रोत हैं सब में लगे रह रहे हैं, लेकिन फिर इस संसार में आपको मन तो लगाते लेकिन संसार से परे हो जाता। वो पंक्ति कितनी सुंदर है, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी,

सिर्फ एक दूसरे पे दोषारोपण करते, वो व्यक्ति संसार में बड़ा सुखी है, उसके पास में धन है ना, इसीलिए सुखी है। धनवान से भी पूछा तो मेरे नजरों में वो सुखी है, वो सुखी है। ये तृप्ति जाती ही नहीं संसार से। गरीब से पूछो तो धनवानी सुखी है, धनवान से पूछो तो राजा सुखी है, राजा से पूछो तो महाराजा सुखी है, महाराजा से पूछो तो इंद्र जो देवताओं के राजा उनके पास सुख है, देवताओं के राजा इंद्र से पूछो तो ब्रह्मा जी सुखी है। कहा इस संसार से, इस धराधाम से एक निर्धन व्यक्ति से लेकर के और ब्रह्मा जी तक कोई सुखी नहीं है। सुखी संसार में कौन? तो तुलसीदास विचारी है कहे, हरि भक्ति बिजा जब जीव दुखारी। परमात्मा के भक्ति से विलीन, परमात्मा से भक्ति से जिस दिन आप दूर हो जाओगे उस दिन फिर सुखी नहीं रहेगी। श्री कर्दम जी महाराज कहे देवभूति से, देवभूति तुम चिंता मत करो, तेरे गर्भ से साक्षात भगवान अवतरित होने वाले हैं। तस्याम बहुतिथे काले भगवन्ना मधुसूदनः।

बहुत काल बीतने पर साक्षात भगवान मधुसूदन देवहूति के गर्भ में जैसे लकड़ी में अग्नि प्रकट होती है, भगवान वैसा ही प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए, जिस दिन की तलाश थी, जिस तिथि की तलाश थी कि हमारे राम आएंगे, उस दिन को ये पूरा होते हुए परमात्मा ने देरी नहीं लगाया। देरी ही सही, लेकिन परमात्मा तो आए, ईश्वर तो आए, भगवान तो आए।

थोड़े देर ही सही, लेकिन ईश्वर तो आए। इसी के लिए कहा,

मन रूपी मंदिर में या झोपड़ी में आ जाएंगे उस दिन तो आपका भाग्य खुलना ही है, इसमें कतई संशय नहीं है। और आज भगवान राम साक्षात करदम जी महाराज के यहां, देवहूति महारानी के यहां भगवान राम आए हैं। और जिस प्रकार सबरी के यहां राम जाते हैं उसी प्रकार तो परमात्मा यहां है।

जिस प्रकार से सभी कष्ट को मिटाने हेतु भगवान राम सबरी को भी जिन्होंने दर्शन दिया, आज करदम जी महाराज के यहां और देवहूति महारानी के यहां भगवान साक्षात अवतरित हुए, भगवान का अवतार हुआ।

बड़े हर्ष छा रहा है। आज वर्षों से इंतजार है ना, जिस परमात्मा के दर्शन करने के लिए देवता लोग भी ललाहित रहते, ऋषि महर्षि संत लोग ललाहित रहते, ठीक उसी प्रकार परमात्मा के आज दर्शन और उनके छवि मिला, आज हर्ष के मारे मानो की ओत प्रोत हो गए। आकाश मंडल में करदम जी महाराज से ब्रह्मा जी महाराज कहना प्रारंभ किए कि हे पुत्र, तुमने सृष्टि की वृद्धि करके मेरे वचन का पालन किया है, मुझे संतुष्ट किया है। पुत्रों का यही कर्तव्य होता है। और ये जो तुम्हारा पुत्र बनकर के आए हैं, ये तो अयम सिद्ध गणाधीश, आपके पुत्र कर्म मूल वासनाओं का नाश करने के लिए सिद्धों में प्रमुख होकर के तुम्हारी कीर्ति के यश और कपिल नाम से ये विख्यात होंगे। ब्रह्मा जी महाराज आकाश से ही भगवान के नामकरण कर दिए कि तुम्हारी संतान जो प्राप्त हुई ना, तुम्हारे पुत्र के रूप में जो प्राप्त हुए हैं, इनका नाम कपिल होगा। प्रेम से बोलिए कपिल जी महाराज की जय। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी महाराज हंस पर बैठ करके चले गए। उस समय में अपने पुत्र कपिल देव जी महाराज को परिक्रमा किए और परिक्रमा करने के पश्चात अब देवहूति से कहे कि देवहूति, जितने दिन के लिए जो हमारी

व्यवस्था थी इस संसार के लिए, बस अब समाप्त हुई। अब मैं भगवान के परम पथ को सुव्यवस्थित करूं, मैं अपने परलोक को बनाऊं, इसके लिए अब मुझे जाना चाहिए। और वहीं पे घूम करके परिक्रमा करके वहां से चल दिए। करदम जी महाराज वहां से निकल गए। देवहूति महारानी अपने पुत्र से विनती कर रही है, प्रार्थना कर रही है। कैसे विनती प्रार्थना कर रही है?

दोनों हाथों को जोड़ करके देवहूति माता अपने पुत्र से ही विनती कर रही है। कैसे विनती कर रही है कि हे प्रभु, आपने जो इस देह में मेरा और मैं मेरा आग्रह लगा हुआ है, मेरे इस संदेह को दूर करिए। आप इस संसार में आने के बाद मेरा ये सब धन, ये संपत्ति, ये तो मेरा ही है, किसी का है नहीं, तो ये सब क्यों लगा रहता है? आज तक मैं अपने संसार में आने के पश्चात परमात्मा में विलीन नहीं हुए, लेकिन हमारे पति देव इस संसार में रहते हुए भी परमात्मा के उस परम मार्ग पे प्रशस्त बना करके चल दिए। मैं और मेरा का जो संबंध है, तेरा मेरा का संबंध है, इसके बारे में बताइए कि इस मोह से, इस माया से मैं भी दूर होकर के भगवान के चिंतन में लग जाऊं, परमात्मा के चिंतन में लग जाऊं, मेरा भी परमार्थ पथ सुव्यवस्थित हो जाए। मुझे बताइए आखिर मन इस संसार में इतनी व्यग्रता के साथ मन भ्रमण करते रहता है, भ्रमण करते रहता है, इसे छोड़ करके, इस संसार को छोड़ करके जाने का मन नहीं करता, आखिर क्यों? इस संसार तो शाश्वत नहीं है, शाश्वत तो एक परमात्मा का पथ ही है, परमात्मा का मार्ग ही है। इसी के लिए मेरे लिए कोई आदेश हो कि मन मेरा एकदम शांत हो जाए, इस संसार से मेरा मन विरक्त हो जाए, मैं आज आपके दर्शन करके मैं मुग्ध हो गई, कृतार्थ हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे लिए उपदेश बताया जाए कि मन संसार से किस प्रकार से भागे और मेरा मन ईश्वर में जाकर के किस प्रकार से लग जाए, यही आपसे विनती और मेरा प्रार्थना है। मेरी प्रार्थना को आप स्वीकार करें। कपिल भगवान कह रहे हैं, मां मन

स्वर से लग जाता है तो मुक्ति दाता होता है, और जब मन संसार विषयों में रम जाता है तो यही बंधन का कारण है। खूब अच्छे से समझा जाए इस बात को लेकर के, जब मन अपना भगवान में लगे, परमात्मा में लगे, तो ये मोक्ष का कारण है। मोक्ष परम तत्व को प्राप्त करा देता है, लेकिन यही मन जब संसार में लग जाता है तो यही बंधन का कारण है। अब थोड़ा सा सहज रूप में समझा जाए, ताला को खोलने के लिए एक ही चाबी इधर घुमा दिया जाए तो ताला को बंद कर देता, और उसी चाबी लगा करके ताला चाबी को घुमा दिया जाए दाहिने साइड से तो ताला खुल जाते है? बाएं में आप जो घुमाइए तो ताला बंद, दाहिने में घुमाइए ताला खुल गया। ठीक इसी प्रकार से एक ही मन चाबी जैसा है। अब मन को आप जो है परमार्थ पथ में लगा दिए तो जीवन मुक्त हो जाता है, और इसी मन को आप संसार में लगा दिए तो बस बंधन हो जाता है। चाबी एक ही है, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंद मोक्षयो। हे मां, इस संसार में मन ही बंधन का कारण है और मन ही परम मोक्ष का कारण है। ये मन के ऊपर निर्भर करता है। बड़े सुंदर दोहा में बता रहे हैं, जब

जब तक मन जीत्यो नहीं, जब तक मन को जीते नहीं तो ये संसार में तुम्हारी जीत नहीं होगी। तुम्हें संसार को जीतना है तो पहले मन को जीतो, संसार को जीतने में समय नहीं लगेगा।

यदि आपने मन को जीत लिया तो संसार वश में ही है आपके, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। हे माता, स्थिर चित्त लोगों की इंद्रियों को जो स्वाभाविक निष्काम वृत्ति है, बड़ी सुंदर बात बताए, जो स्थिर चित्त लोगों के इंद्रियों को जो स्वाभाविक निष्काम वृत्ति है वही तो भक्ति है। जब प्राणी माता पिता सुहृद गुरु और शुभ चिंतक मुझे ही मानता है तब उनका मोक्ष भ्रंश नहीं होता, न मेरा काल चक्र ही उसको स्पर्श करता। जो इस तरह अनन्य भाव से मेरा भजन करता है उसका मैं उद्धार कर देता हूं। बात वही हुई कि मन को परमात्मा में लगा करके जिस दिन ये विचार आ जाए कि ये संसार में मेरा कुछ भी नहीं, भगवान का दिया हुआ अमानत है, उससे मैं संयोग करके रख रहा हूं, ये मेरा रखना, सुव्यवस्थित करना, संयोग करके रखना, व्यवस्थित करना, ये मेरा परम कर्तव्य है, ये मेरा नहीं है। जिस दिन ये लग जाए कि ये संसार में सभी परमात्मा के ही दिए हुए संतानों को मैं रक्षा कर रहा हूं, बस मेरी उतना ही कार्य है, दूसरा अधिक कार्य नहीं है। मैंने पालन किया, मैंने पोषण किया, उसको मैंने भोजन दिया, ये तुम्हारी ये भ्रम है। भगवान कहते हैं कि तुम अपने कुटुंबियों का पालन करो, माता पिता का पालन करो, गुरु का पालन करो, शुभ चिंतक बने रहो, लेकिन मन संसार में नहीं, मन जो है मेरे में लगाओ, यही जो भजन बन जाता है, यही कीर्तन बन जाता है, और तेरा उद्धार भी हो जाएगा।

0: स्वामी।
1: भाव तो एक ही होना चाहिए कि आप मेरे स्वामी हैं और आपके मैं दास हूं। बस मेरे संसार में और कोई आपके सिवा मेरे संसार में कोई है ही नहीं, बस इतना ही है। हे दिन बंधु, हे अंतर्यामी, बस आप मेरे हो और मैं आपका हूं। जब जीव सारे आसुरों को छोड़कर के मेरे शरण में होता है तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी आसराओं को छोड़ करके, सभी मार्गों को छोड़ करके जब जीव मेरे समक्ष होता है तो उस जीव का कल्याण हो जाता है, तभी मेरे इस स्वरूप को पहचान पाता है। और मेरे कहते भी हैं कि मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे।

मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। पर जिस दिन जान गए उस दिन जीवन कृतार्थ हो जाता है, उस दिन जीवन पावन हो जाता है। ये संतों की वाणी है, साक्षात भगवान कह रहे हैं कि मेरे रूप को जान लेने वाला जीव कल्याण को प्राप्त कर लेता है। इसी के लिए कहा कि मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। द्वैत जगत का हूं मैं त्वष्टा, मन वाणी का हूं मैं दृष्टा, मैं हूं साक्षी रूप, मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। बड़े सुंदर भाव जताया प्यारा सवचन आप सबों के समक्ष।

कार्यक्रम सत्संग प्रभात रेडियो भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ट्ज के तरंग के माध्यम से आप सब मिलकर के श्रवण कर रहे हैं। किस प्रकार से भगवान देवहूति माता को मन स्थिति को शांत रख करके ईश्वर के भजन में लगे, मन की कलुषता को किस प्रकार समाप्त हो, ये सब प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से देती हैं आने वाले सत्र में हम सब मिलकर के श्रवण करेंगे। कार्यक्रम सत्संग प्रभात रेडियो भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ट्ज के तरंग के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं सत्संग प्रभात को। अखिलेश यादव जी नरकटियागंज से इस कार्यक्रम को रसपान कर रहे हैं। संजय यादव जी लौरिया से, रंजन तिवारी जी तुरहापट्टी पश्चिमी चंपारण से, राजेश जी विश्रामपुर से, ब्रिजभूषण पांडे जी मानिकपुर से, राजकुमार माली जी प्रसौनी से, अभिषेक सिंह जी गोपालगंज से, पीयूष कुमार पांडे जी बिरगंज से, पूजा पराशर जी बिरगंज से, काजल जी बलिरामपुर से, आश मोहम्मद अंसारी जी रामपुर टोकनी से, दीवाना पान भंडार गम्हरिया से, आप श्याम सुंदर बैठा जी नियमित श्रोता हैं और कार्यक्रम सत्संग प्रभात को नियमित रूप से आप श्रवण करते हैं, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। अर्जुन कुमार अकेला जी, राधे राधे गुरु जी, मैं नेपाल बिहार रेडियो श्रोता संघ बैकुंठ धाम बिहार से संजय शाह जी के साथ में इस कार्यक्रम को रसपान कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, ढेर सारा धन्यवाद। अर्जुन कुमार अकेला जी कार्यक्रम सत्संग प्रभात सुनकर के साथ दिए, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। आने वाले सत्र में मैं जितेंद्र पाराशर आप सबों के समक्ष जरूर उपस्थित होंगे। आपका दिन मंगलमय हो, परमात्मा की असीम अनुकंपा बनी रहे, इसी शुभ संदेशों के साथ जय श्री राधे, जय

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
5: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगी छन हो, गोड़ भगेल।

0: पटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात, आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत, आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत, आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: ए चाचा जी, राउर लाठी हेने बाटे आ खोज तानी हो ने हैली रोआ अपन लाठी।
4: अरे देख न बबी, यार से कुछ लगते नहीं छे, भगवान तोहरा सदा खुश रखे।
3: चली चाचा जी, रोरा के ले चला तानी। राम कुमार महावीर प्रसाद केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में।
5: ये हॉस्पिटल के सेवा सब है,
3: हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज, जल बिंदु के संपूर्ण इलाज,
5: बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़त त समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा,
3: कॉर्निया के संपूर्ण इलाज,
5: बच्चा के आँख के संपूर्ण इलाज।
3: नोट, कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिली।
5: आँख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज।
6: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550368667, 98013-6511, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013-6511। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।

0: हामी सबै नेपाली अनि हामी सबैको भावना एक र सबैलाई मनपर्ने भोजपुरी एफएम 92.8
1: कलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी
2: जी आप सही सुने कलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
1: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग कॉन्फ्रेंस बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
2: क्लार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज इंडियन कॉन्टिनेंटल इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
1: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
3: संपर्क मोबाइल नंबर 98023 10555 और 98023 10888।

0: अरे डंडा जाना तो ऐसी वैसी रेडियो नानू भाई भोजपुरी ये भी मजे सुने ला कान में लगाओ तो झूम जाला।
1: अरे खाली अपना ही क्या सुनवा, अगर हमारा क्या सुनाई बा,
0: चलो ना ही सुन ला।

0: अरे बाप रे माया, इतना सुंदर है हम तो कौन ना नाबाजत रख।
1: तो सुना दी आओ चाल कर मुकेश भाई क्या शरमनाथ भाई क्या की सुना दी सब गाँव लोग के। भोजपुरिया ए भेम जय सुनेला
2: ए बाबू हे बाबू।
3: खूनदान ही जीवन दान है। टाइम चेक भोजपुरिया FM 92.8 MHz में। अभी सवेरे के 7 बजे।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोड़ भगे।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करे छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सा सावधान रहब।
0: तहन आप दोसर नहीं, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9855-36-867, 9813-65-011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9813-65-011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
4: भोजपुरिया FM 92.8 MHz पर सुन रहल बानी भक्ति भाव से भरल गीत संगीत।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियरा गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला।
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ई की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोड़ भ गेल छी।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 98023 10555 और 98023 10888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550 36867, 98013 65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013 65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
8: भोजपुरी FM 92.8 MHz पर सुन रहल बानी भक्ति भाव से भरल गीत संगीत।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160002।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियरा गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बा एकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टोनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजुए अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमाक्यूर, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमाक्यूर।
7: गुजरात प्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोड़ भगेल।

0: कटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन, सांवला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: ए लक्ष्मीनिया बोलत काहे नहीं कसन, काथी भइल बा?
4: ए रामू भैया, राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
3: सुनो बबी, देर ना करो, इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी यहाँ के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी। और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बड़न, तथा यहाँ दोनों आदमी मिल के इस सब बीमारी के उचित इलाज, उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले इहे बीमारी भइल रहे, लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
5: उठाओ सर, इनका के जल्दी ले चला मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
4: जी हाँ, यहाँ लकवा, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, मिर्गी के इलाज, दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर, टीबी तथा इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलता पूर्वक होला।
3: संपर्क हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
6: डॉक्टर मोबिन हाशमी, मोबाइल नंबर 7201955466, 7062523, 58579 आ 98525868046।
7: ए चाचा जी, राउर लाठी है ने बाटे आ खोजा तानी हो ने हैली रोवा अपन लाठी।
8: अरे देख ना बाबी, यार से कुछ लगते नहीं छे, भगवान तो हटा सदा खुश रखे।
7: चली चाचा जी, रोरा के ले चला तानी। राम कुमार महावीर प्रसाद केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में।
9: ये हॉस्पिटल के सेवा सब है,
7: हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज, जल बिंदु के संपूर्ण इलाज,
9: बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़त त समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा,
7: कॉर्निया के संपूर्ण इलाज,
9: बच्चा के आँख के संपूर्ण इलाज।
7: नोट, कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिली।
9: आँख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज।
10: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550368667, 98013065011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013065011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज, टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।
11: भोजपुरिया FM 92.8 MHz पर सुन रहल वानी भक्ति भाव से भरल गीत संगीत।

0: खून दान ही जीवन दान है। टाइम चेक भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ज में
1: अभी सवेरे के 8 बजे।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता, प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 90971602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बा एकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेड, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर क्योर, यह स्टोमा क्योर।
7: गुजरात ग्रोमेड गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्योर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भ गेल छी।

0: फोकटिया क्रीम नहीं यूज करे छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550-36-867, 98013-65-011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013-65-011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
4: भोजपुरिया FM 92.8 MHz पर सुन रहल बानी भक्ति भाव से भरल गीत संगीत।
5: श्रावण मास में सूर्य इंद्र स्वरूप होते हैं, अपनी 200 किरणों से प्रकाशित होते हैं। इस मास में इनके साथ ऋषि अंगिरा, विश्वासु नामक गंधर्व, प्रगलेचा अप्सरा, एला पुत्र नामक सर्प, स्त्योत्य नामक यक्ष तथा सर्प नामक राक्षस होते हैं। भाद्रपद महीने में सूर्य विवस्वान स्वरूप हो जाते हैं, अपनी 300 किरणों के साथ चमकते हैं। इनके साथ ऋषि भृगु, उग्रसेन गंधर्व, अनुम्लोचा अप्सरा, आपूरण यक्ष, शंखपाल सर्प और व्याघ्र नामक राक्षस होते हैं। अश्विनी मास में इनका स्वरूप पूषा होता है, अपनी 200 किरणों से ही चमकते हैं। इनके साथ गौतम ऋषि, घृताची अप्सरा, सुषेण गंधर्व, धनंजय नाग और वात नामक राक्षस होते हैं। कार्तिक में सूर्य पर्जन्य स्वरूप होते हैं, अपनी 1100 किरणों से चमकते हैं। इनके साथ भरद्वाज ऋषि, विश्वाची अप्सरा, विश्वावसु गंधर्व, सेनजित यक्ष, ऐरावत सर्प तथा अन्य राक्षस होते हैं।

0: भोजपुरी आवाज, भोजपुरी संस्कृति और भोजपुरिया सबके साथ भोजपुरिया FM 92.8 MHz।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तारखाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 90971602।
5: ए लक्ष्मीनिया, बोलत काहे नहीं कसन, काथी भइल बा?
6: ए रामू भैया, राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
5: सुनो बबी, देर ना करो, इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी यहाँ के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बड़न तथा यहाँ दोनों आदमी मिल के इस सब बीमारी के उचित इलाज, उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले यह बीमारी भइल रहे लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
7: उठाओ सर, इनका के जल्दी ले चला मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
6: जी हाँ, यहाँ लकवा, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, मिर्गी के इलाज, दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर, TB तथा इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलतापूर्वक होला।
5: संपर्क हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
8: डॉक्टर मोबिन हाशमी, मोबाइल नंबर 7291-55466, 62-65523, 58579 आ 98525-68-46।
9: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियरा गइल बा, हाथों झनझनाता, का बा एकर इलाज?
10: देखी, अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी त हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
11: जी, गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
12: जी, अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला।
13: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
11: गुजरात ग्रोमेट, गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
14: अरे वाह भौजी, अरे ई की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भ गेल।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
5: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
6: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
3: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
6: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99555।

से आप सुन रहे हो भोजपुरी FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टोनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यू, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्योर।
7: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्योर।
10: ए चाचा जी राउर लाठी है ने बाटे आ खोजा तानी हो ने हैली रोवा अपन लाठी।
11: अरे देख ना बबी यार से कुछ लगते नहीं छे, भगवान तो हटा सदा खुश रखे।
10: चली चाचा जी रोरा के ले चला तानी राम कुमार महावीर प्रसाद केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में।
12: ये हॉस्पिटल के सेवा सब
10: हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज, जल बिंदु के संपूर्ण इलाज,
12: बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़ता तो समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा,
10: कॉर्निया के संपूर्ण इलाज,
12: बच्चा के आँख के संपूर्ण इलाज।
10: नोट, कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिली।
12: आँख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज।
13: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भ गेल।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550368667, 98013065011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013065011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।
4: नमस्ते, सुनत रहे रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz। गीत संगीत के साथ झूमते रहें।

0: रक्तदान जीवन दान टाइम चेक भोजपुरी FM 92.8 MHz में अभी सवेरे के 9 बजे।
1: नमस्ते, सुनत रहे रेडियो भोजपुरी FM 92.8 MHz। गीत संगीत के साथ झूमत रहे।
2: पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट कारवा मिनी।
3: सारेगामा कारवा इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूँ रुचि आपके साथ।
4: बदन पे सितारे लपेटे हुए

अगर आप चाहते हैं भोजपुरी हिट सॉन्ग सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लवली वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, आईटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकन हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाएकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेड, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
9: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जॉन गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
8: गुजरात क्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोर भ गेल।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलिए ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे दे ताहा के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग धूरी सब सब दूर करत आ आंख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: ए लक्ष्मीनिया बोलत काहे नहीं कसन, काथी भइल बा?
4: ए रामू भैया, राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
3: सुनो बबी, देर ना करो, इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी यहाँ के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी। और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बड़न, तथा यहाँ दोनों आदमी मिल के इस सब बीमारी के उचित इलाज उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले यह बीमारी भइल रहे, लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
5: उठाओ सर, इनका के जल्दी ले चला मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
4: जी हाँ, यहाँ लकवा, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, मिर्गी के इलाज, दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर, टीबी तथा इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलता पूर्वक होला।
3: संपर्क हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
6: डॉक्टर मोबिन हाशमी, मोबाइल नंबर 7201-55466, 62-65523, 58579 आ 98525-68-46।
7: कोलार्क रिसर्च, बीरगंज 14 बहुअरी।
8: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल, जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
7: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
8: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
7: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
5: संपर्क मोबाइल नंबर 98023-10555 और 98023-10888।
9: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550-36867, 98013-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज, टाउन हॉल गेट के पास, परसा, नेपाल।
10: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: समीज बार
1: जिया
0: आर्य सूति सलवार गोरी
1: हाँ
0: सिल्की समीज बार

जबान आर मर तारू लाइट यतना आँख भइल फिजबान।

0: जाए तो हो
1: कहला।

0: अरे बड़ा मुलायम लगता हो।
1: भोजपुरी आवाज, भोजपुरी संस्कृति और ये भोजपुरिया सबके साथ, यह भोजपुरिया FM 92.8 MHz।
2: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, आहा तो झनझनाता, का बायकर इलाज?
3: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
1: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजुए अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
4: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जॉन गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आ पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
2: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
1: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
5: ए चाचा जी राउर लाठी है ने बाटे आ खोजा तानी हो ने हैली रोवा अपन लाठी।
6: अरे देख ना बबी, याद से कुछ लगते नहीं छे, भगवान तो हटा सदा खुश रखे।
5: चली चाचा जी रोरा के ले चला तानी, राम कुमार महावीर प्रसाद केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में।
7: ई हॉस्पिटल के सेवा सब है,
5: हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज, जल बिंदु के संपूर्ण इलाज,
7: बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़ता तो समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा,
5: कॉर्निया के संपूर्ण इलाज,
7: बच्चा के आँख के संपूर्ण इलाज।
5: नोट, कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिली।
7: आँख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज।
8: अरे वाह भौजी, अरे ई की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भ गेल छी।

0: आब हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तऽ गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।

0: हौल गेट के पास पर्सा नेपाल।
1: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: radioweb.in।
1: भोजपुरी आवाज, भोजपुरी संस्कृति और भोजपुरिया सबके साथ भोजपुरिया FM 92.8 MHz।
2: डॉक्टर साहब देखी न, मुँह पियरा गई बा, हाँ तो झंझनाता, का बाएकर इलाज?
3: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
4: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टोनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
5: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यू, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला।
6: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
4: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
7: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
8: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
7: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
9: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
10: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
7: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
10: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
9: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
7: और 9097160602।
11: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन हो, गोड़ भ गेल।

0: फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन, सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी।
4: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
3: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
4: कोलार्क रिसर्च आपको अनेक तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
3: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
5: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
6: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9850-36867, 9803-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9803-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।

0: भोजपुरी आवाज, भोजपुरी संस्कृति और भोजपुरिया सबके साथ यह भोजपुरिया FM 92.8 MHz
1: करी खूनदान दी जीवन दान टाइम चेक भोजपुरिया FM 92.8 MHz में अभी सवेरे के 10 बजे।
2: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: भोजपुरी आवाज, भोजपुरी संस्कृति और भोजपुरिया सबके साथ भोजपुरिया FM 92.8 MHz।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तारखाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बा एकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में सहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टोनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात क्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोड़ भ गेल।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए जाए, किसी होटल में जाए जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट्स बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9855-36867, 9803-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9803-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
8: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: भोजपुरी आवाज, भोजपुरी संस्कृति और ये भोजपुरिया सबके साथ यह भोजपुरिया FM 92.8 MHz।
1: डॉक्टर साहब देखी न मुँह पियरा गई बा आहा तो झंझनाता का बाएकर इलाज
2: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी त हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
0: जी गुजरात ग्रोमेट विश्वास के एक नाम गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
3: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर जॉन गैस्ट्रिक अल्सर हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ उच्च रक्तचाप पुरान आव पुरान कब्ज सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला
4: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर यह स्टोमा क्यूर
0: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
6: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब टैबलेट इंजेक्शन सिरप गांजा स्माइक के इलाज और गठिया टीका पथरी कमर दर्द घुटना दर्द दमा मिर्गी दाद दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया मासिक खराबी बवासीर पेट रोग शुगर गैस्ट्रिक शीघ्र पतन शुक्राणु में कमी नपुंसकता धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग दिनाए खुजली एक्जिमा सोराइसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में
7: प्रत्येक शुक्रवार शनिवार एवं रविवार
5: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में
7: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
5: और 9097160602।
8: ए चाचा जी राउर लाठी है ने बाटे आ खोजा तानी हो ने हैली रोवा अपन लाठी।
9: अरे देख ना बाबी यार से कुछ लगते नहीं छे भगवान तो हटा सदा खुश रखे।
8: चली चाचा जी रोरा के ले चला तानी राम कुमार महावीर प्रसाद केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में।
9: ये हॉस्पिटल के सेवा सब है
8: हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज जल बिंदु के संपूर्ण इलाज
9: बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़ता तो समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा।
8: कॉर्निया के संपूर्ण इलाज
9: बच्चा के आँख के संपूर्ण इलाज
8: नोट कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिली।
9: आँख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज।
10: अरे वाह भौजी अरे ई की चेहरा पर गजब के चमक पहिने कारी लगे छन हो गोर भ गेल

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरी गोरी क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550368667, 98013065011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013065011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
4: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: बहुत सौ करेंगे हम और तनि बाहर तनि खाना निकाल के रखा था
1: खाना चाहिए चाहिए खाना
0: अरे हई का खाना मत आ गई लो
1: खाना
0: हाँ।

0: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथ ही अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेड, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथ बा स्टोमाक्यूर, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमाक्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेड, गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भ गेल।

0: आब हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: ए लक्ष्मीनिया बोलत काहे नहीं कसन, काथी भइल बा?
4: ए रामू भैया, राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
3: सुनो बबी, देर ना करो, इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी यहाँ के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी। और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बाड़न, तथा यहाँ दोनों आदमी मिल के इस सब बीमारी के उचित इलाज उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले यह बीमारी भइल रहे, लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
5: उठाओ सर, इनका के जल्दी ले चला मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
4: जी हाँ, यहाँ लकवा, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, मिर्गी के इलाज, दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर, टीबी तथा इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलता पूर्वक होला।
3: संपर्क हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
6: डॉक्टर मोबिन हाशमी, मोबाइल नंबर 7201-55466, 62-5523, 58-579 आ 98-525-68-46।
7: कोलार्क रिसर्च, बीरगंज 14 बहुअरी।
8: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
7: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
8: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
7: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
8: संपर्क मोबाइल नंबर 98023-10555 और 98023-10888।
9: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550-36867, 98013-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज, टाउन हॉल गेट के पास, परसा, नेपाल।
10: नमस्ते, सुनत रहे रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz। गीत संगीत के साथ जुड़े रहें।

0: हामी सबै नेपाली अनि हामी सबैको भावना एक र सबैलाई मनपर्ने भोजपुरी एफएम 92.8
1: खुनदान ही जीवनदान है। टाइम चेक भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ज में अभी सवेरे के 11 बजे।
2: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी एफएम 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

अगर आप चाहते हैं भोजपुरी हिट सॉन्ग सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लवली वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें।

0: بغلا مت جئیہ.
1: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8.
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं. वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं. आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से. डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
3: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं.
4: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
5: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
2: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में.
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
2: और 9097160.
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियरा गई बा, हाँ तो झंझनाता, का बाएगर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में सहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी. साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी.
8: जी गुजरात ग्रोमेड, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी. हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स.
9: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
6: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर.
8: गुजरात ग्रोमेड, गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर.
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोड़ भ गेल.

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
4: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
3: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
4: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
3: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
5: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
6: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9855-36867, 9803-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9803-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
7: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: भी बोलते हो।
1: भोजपुरी आवाज, भोजपुरी संस्कृति और ये भोजपुरिया सबके साथ भोजपुरिया FM 92.8 MHz।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
3: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, आईटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
0: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
2: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
2: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियरा गई बा, हाथों झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेड, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजुए अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेड, गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ई की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भ गेल।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550-36867, 98013-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
4: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: भोजपुरी आवाज, भोजपुरी संस्कृति और भोजपुरिया सबके साथ यह भोजपुरिया एफ एम 92.8 मेगाहर्ट्ज।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, आईटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 90971602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाँ तो झंझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमाक्यूल, जॉन, गैस्ट्रिक, अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमाक्यूल।
7: गुजरात ग्रोमेट, गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्यूल।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोड़ भ गेल।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सा सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9855 36 867, 9803 65 011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9803 65 011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।
4: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: हामी सबै नेपाली अनि हामी सबैको भावना एक र सबैलाई मनपर्ने भोजपुरी एफएम 92.8
1: खुनदान ही जीवनदान है। टाइम चेक भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ज में अभी दोपहर के 12 बजे
2: भक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम सत्संग प्रभात सत्संग प्रभात सत्य पे निष्ठा कलयुग का पतवार सब करेगा वही जो है पालनहार मर्यादा को सिखाए अधर्म पर पहुँचे आघात परम निष्ठा से सुनो यही है कार्यक्रम सत्संग प्रभात इंद्रपाराश्र के साथ में रेडियो भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज में शिव मेरी पूजा, शिव प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक सायं 7 बजे से 8 बजे तक कार्यक्रम सत्संग प्रभात सत्संग प्रभात

0: सुर में गाना सीखिए पाधानिसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
1: वो नहीं आने वाली, वो फ्री, वो फा, निशाला आवाज़ की।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
5: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
6: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाँ तो झंझनाता, का बाएकर इलाज?
7: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
8: जी गुजरात ग्रोमेड, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
9: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जॉन गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
10: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
8: गुजरात ग्रोमेड, गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
11: अरे वाह भौजी, अरे की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भ गेल छी।

0: कटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी।
4: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
3: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
4: कोलार्क रिसर्च आपको अनेक तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
3: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
5: संपर्क मोबाइल नंबर 98023 10555 और 98023 10888।
6: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550 36867, 98013 65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013 65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।
7: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8।
8: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ, AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गेठी

0: पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में
1: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड मुख्तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9955-9494-53
0: और 9097-6160-02।
3: डॉक्टर साहब देखी ना मुँह पियरा गइल बा आ हाथों झनझनाता का बायकर इलाज
4: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी त हेमोडेक्स ही प्रयोग करी
5: जी गुजरात ग्रोमेट विश्वास के एक नाम गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टोनिक हेमोडेक्स जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी हेमोडेक्स आजुए अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स
2: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर जॉन गैस्ट्रिक अल्सर हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ उच्च रक्तचाप पुरान आ पुरान कब्ज सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला
3: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर यह स्टोमा क्यूर
5: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
6: अरे वाह भौजी अरे ई की चेहरा पर गजब के चमक पहिने कारी लगे छन हो गोर भ गेल।

0: पटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550-36867, 98013-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
4: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियरा गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टोनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
8: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यू, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला।
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात क्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोर भ गेल।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 98023 10555 और 98023 10888।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथ ही अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेड, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमाक्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमाक्यूर।
7: गुजरात क्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोड़ भ गेल।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550368667, 98013065011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013065011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
4: फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन में अहिले तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ द किंग अफ इंटरटेनमेंट भोजपुरिया FM 92.8।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु छिनताई और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का भयकर इलाज
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर जॉन गैस्ट्रिक अल्सर हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ उच्च रक्तचाप पुरान आ पुरान कब्ज सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर यह स्टोमा क्यूर
7: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ई की चेहरा पर गजब के चमक पहिने कारी लगे छन, गोर भ गेल।

0: फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550368667 98013 65011 वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013 65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz आदर्श नगर वीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
4: फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन में अहिले तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ द किंग अफ इन्टरटेनमेन्ट भोजपुरिया FM

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड कारखाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाय कर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेड, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेड, गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोड़ भ गेल।

0: आब हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहीं, बस

0: 크림.
1: 밀마다 사랑하이.
2: कोलार रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी
3: जी आप सही सुने कोलार रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसोर्ट में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
2: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग कॉन्फ्रेंस बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
3: क्लार्क रिसोर्ट आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज इंडियन कॉन्टिनेंटल इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
2: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
4: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
5: 92.8 फ्रिक्वेन्सी मोड्युलेसनमा अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ द किङ अफ इन्टरटेनमेन्ट भोजपुरिया एफएम

भक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम सत्संग प्रभात। सत्संग प्रभात, सत्य पे निष्ठा कलयुग का पतवार, सब करेगा वही जो है पालनहार। मर्यादा को सिखाए अधर्म पर पहुँचे आघात, परम निष्ठा से सुनो यही है कार्यक्रम सत्संग प्रभात। जितेंद्र पाराशर के साथ में रेडियो भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ट्ज में शिव मेरी पूजा, शिव प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, सायं 7 बजे से 8 बजे तक कार्यक्रम सत्संग प्रभात। सत्संग प्रभात।

0: हामी सबै नेपाली अनि हामी सबैको भावना एक र सबैलाई मनपर्ने भोजपुरी एफएम 92.8
1: करी खुनदान दी जीवनदान टाइम चेक भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ज में अभी दोपहर के 2 बजे।
2: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी एफएम 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: छुआ, दिल में है प्यार तेरा, होठों पे गीतवा।
1: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
2: डाक्टर साहब देखी न, मुँह पियर आ गई बा, अहाँ तो झंझनाता, का बाएकर इलाज?
3: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इ सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
4: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
5: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यू, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
2: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
4: गुजरात ग्रोमेट, गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
6: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
7: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
6: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
5: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
8: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
6: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
8: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
6: और 90971602।
9: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोड़ भगे

0: आब हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी।
4: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
3: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
4: क्लार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
3: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
5: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
6: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9850-36867, 9813-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9813-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
7: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, आईटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड मुक्ता कारखाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियरा गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बा एकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जो सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जो 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेड, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टोनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
8: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जॉन गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेड, गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोड़ भ गेल।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: वो किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट्स बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9850-36867, 9803-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9803-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।
8: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आ पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ई की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भ गेल।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सवला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आंख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरी गोरी क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सा सावधान रहब।
0: तहन आप दोसर नहीं, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: वो किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: क्लार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803101555 और 9803101888।
7: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: हामी सबै नेपाली अनि हामी सबैको भावना एक र सबैलाई मनपर्ने भोजपुरी एफएम 92.8
1: खुनदान ही जीवनदान है। टाइम चेक भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ज में अभी दोपहर के 3 बजे।
2: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी एफएम 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी त हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथ बा स्टोमाक्यूर, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमाक्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, महीने कारी लगे छन, गोड़ भग

0: फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसोर्ट में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप

0: 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
1: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
0: क्लार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
1: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
2: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9850-36867, 9803-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9803-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।
4: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: डाक्टर साहब देखी न मुँह पियरा गइल बा आ हाथों झनझनाता, का बा एकर इलाज?
2: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
3: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टोनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजुए अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
4: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जॉन गैस्ट्रिक अल्सर हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आ पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला।
1: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
3: गुजरात ग्रोमेट, गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
4: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
7: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
5: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
7: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
5: और 9097160602।
8: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोल भगे।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट्स बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, क्लार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: क्लार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9855-36867, 9803-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9803-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।
8: नमस्ते, सुनत रहे रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz।
9: गीत संगीत के साथ झूमत रहे।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु छिनताई और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी त हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
5: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
9: अरे वाह भौजी, अरे ई की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोर भगे।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करे छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सा सावधान रहब।
0: तहन आप दोसर नहीं, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए जाए, किसी होटल में जाए जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9850-36867, 9803-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9803-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
8: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: हामी सबै नेपाली अनि हामी सबैको भावना एक र सबैलाई मनपर्ने भोजपुरी एफएम 92.8
1: खुनदान ही जीवनदान है। टाइम चेक भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ज में
2: अभी दोपहर के 4 बजे।
3: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी एफएम 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।
4: ये गुलशन फूल कलियां बहार वादियां, ये मौसम खेत हरियाली पहाड़ बर्फ, ये कायनात कुछ भी नहीं। गगन में वो नहीं,
5: वो है कौन?
6: कप्तान साहब, उस लड़की का कोई नाम तो होगा।
4: नाम

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियरा गई बा, हाँ तो झंझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में सहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेड, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेड, गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोड़ भ गेल।

0: आब हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन, सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
4: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसोर्ट में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
3: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
4: कोलार्क रिसोर्ट आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
3: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
5: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
6: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9855-36867, 9813-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9813-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।
7: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
8: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: ए लक्ष्मीनिया बोलत काहे नहीं कसन, काथी भइल बा?
11: ए रामू भैया, राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
10: सुनो बबी, देर ना करो, इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी यहाँ के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी, और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बड़न, तथा यहाँ दोनों आदमी मिल के इस सब बीमारी के उचित इलाज, उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले यह बीमारी भइल रहे, लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
12: उठाओ सर, इनका के जल्दी ले चला मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
11: जी हाँ, यहाँ लकवा, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, मिर्गी के इलाज, दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर, टीबी तथा इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलता पूर्वक होला।
10: संपर्क हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
13: डॉक्टर मोबिन हाशमी, मोबाइल नंबर 7201955466, 6262523, 58579 आ 98525868646।
14: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगी छन हो, गोड़ भगे।

0: आब हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550-36867, 98013-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।
4: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: ये है भोजपुरिया FM 92.8 FM FM सुनते रहो सुनाते रहो।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी त हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ई की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भ गेल छी।

0: देखलिए ने।
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे दे तहां के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात और तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आंख के नीचे में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सा सावधान रहब।
0: तहन आप दोसर नहीं, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550368667, 98013-6511, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013-6511। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
4: नमस्ते, सुनत रहे रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz। गीत संगीत के साथ जुड़े रहें।

0: हामी सबै नेपाली अनि हामी सबैको भावना एक र सबैलाई मनपर्ने भोजपुरी एफएम 92.8
1: रक्तदान जीवनदान टाइम चेक भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ज में अभी संझिया के 5 बजे।
2: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी एफएम 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथ ही अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमाक्यूल, जॉन, गैस्ट्रिक, अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
5: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमाक्यूल।
7: गुजरात क्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्यूल।
9: ए चाचा जी राउर लाठी है ने बाटे आ खोजा तानी हो ने हैली रोवा अपन लाठी।
10: अरे देख ना बाबी, यार से कुछ लगते नहीं छे, भगवान तो हटा सदा खुश रखे।
9: चली चाचा जी रोरा के ले चला तानी, राम कुमार महावीर प्रसाद केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में।
11: ये हॉस्पिटल के सेवा सब है,
9: हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज, जल बिंदु के संपूर्ण इलाज,
11: बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़ता तो समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा,
9: कॉर्निया के संपूर्ण इलाज,
11: बच्चा के आँख के संपूर्ण इलाज।
9: नोट, कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिली।
11: आँख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केडिया आँख अस्पताल परवानीपुर बीरगंज।
12: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लवी छन हो गोड़ भगे।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सा सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
4: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसोर्ट में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
3: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
4: कोलार्क रिसोर्ट आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
3: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
5: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
6: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियरा गई बा, हाथों झनझनाता, का बाय कर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स
8: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला।
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: ए लक्ष्मीनिया बोलत काहे नै कसन, काथी भइल बा?
11: ए रामू भैया, राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
10: सुनो बबी, देर ना करो, इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी यहाँ के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी, और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बड़न, तथा यहाँ दोनों आदमी मिल के इस सब बीमारी के उचित इलाज, उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले यह बीमारी भइल रहे, लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
12: उठावा सा इनका के जल्दी ले चला मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
11: जी हाँ, यहाँ लकवा, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, मिर्गी के इलाज, दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर, टीबी तथा इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलतापूर्वक होला।
10: संपर्क हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
13: डॉक्टर मोबिन हाशमी, मोबाइल नंबर 7201955466, 6562523, 58579 आ 98525868646।
14: अरे वाह भौजी, अरे ई की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोर भ गेल।

0: आब हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550-36867 98013-65011 वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
4: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अभी आपने सुना था नहीं।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: एक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब

0: सुन्दर स्वस्थ देखिके चाहतानी त हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
1: जी गुजरात ग्रोमेट विश्वास के एक नाम। गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टोनिक हेमोडेक्स जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजुए अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
2: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर जौन गैस्ट्रिक अल्सर हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ उच्च रक्तचाप पुरान आव पुरान कब्ज सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला
3: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर स्टोमा क्यूर।
1: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
4: अरे वाह भौजी अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक पहिने कारी लगे छन हो गोड़ भगे।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
7: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: हामी सबै नेपाली अनि हामी सबैको भावना एक र सबैलाई मनपर्ने भोजपुरी एफएम 92.8
1: रक्तदान जीवनदान टाइम चेक भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ज में अभी संध्या के 6 बजे।
2: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी एफएम 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

वेब म्यूजिक में आपका स्वागत है। वेब म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और नए नए गानों को सबसे पहले सुनने के लिए घंटी को दबाएं।

0: अच्छा भैया
1: हो
0: आई सबसे पहले हम गायक प्रमोद प्रेमी यादव।
1: अरे
0: आज तमाम भोजप्रिय भैया लोग के हार्दिक को लगी बा। फिर वही हमारे 2018 का चैता के रिकॉर्डिंग वही शिवा स्टूडियो में शंकर सिंह के माध्यम से होके जा रहा है
1: बाबू।
0: फिर वही टीम कुछ अदला बदला सा
1: बाला
0: मंगिया जी हमारे दिवेश बाबू बानी हमारे रतन मास्टर संजय बाबू झाल पर बैठल बड़े बाबू मुन्ना जी और बुचुल मास्टर भी पाले बाबू वही मेरे भाई अरुण बिहारी जी आज तक हमरा के सेवा अपना कलम से कहले नन्हा सा कलकार रवि रसीला बबुआ दीपक दिलेर बबुआ पिंटू प्रेमी जी और हमारे मैनेजर सोनू बाजार समिति सोनू जोशी सभे लोग राम सबक बाबू नीरज जी धरारा से हमारे सोनू जसवाल बाबू राजू जी सभे लोग प्रागण करते हुए आप सबके 2018 के चैता हमने के भेज रहा बन जा। और देखिए वो विशेष बात छोटा भाई भाई चितरंजन जादू जी भी ये चैता में सम्मिलित बड़े बाबू और हमारे गर्जियन नंद कुमार नेता जी सलेमपुर वाले वहाँ के भी स्वागत अभिनंदन भाई और छोट भाई राजीव माँ संतोषी ट्रांसपोर्ट के स्वागत अभिनंदन रही हमारा उस बाबू। और यही चैत के महीना में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के अवतार भइल बा। सखी लोग गीत गौनई गावता मंगल सोहर गावता आ कैसे गावता बाबू
1: कैसे
0: सखी गीत के भाव में आई
1: Let's go, let's go!

0: मध्य दोपहर में दर्शन देने भगवान हो। यही चैत महीना में प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में देखी कवि जी कल्पना कैसे कैले
1: बड़ा कैसे

0: भैया जी धरा हरा से जाता रे, दिनेश भैया भी जाता रे भगवान से भक्ति करे खातिर। ओके ओके
1: हाकी गई तन चौथा पन चबलाई
0: ओ ए बबुआ।

0: हरिबोल हरिबोल
1: मन चौथा मन चौख समाचार सोहर सुनाई
0: खुश
1: बालो महाराज
0: खुश बड़े

वशिष्ठ महाराज देखले तो कहले कि राजन मन में धर रख ई पुत्र ना ई भगवान हवे ई जग के उद्धार करी है आ सृष्टि के कल्याण करी है और दुष्टन के संहार करी है मन में धर रख।

0: बैठे कल्याण होई बाबू बताओ
1: बैठे कबे सीखे और न बिहारी लिखे पढ़ी बेचार हो जाई तवे
0: अरे बाबूजी तनी पढ़ गया जा और हो जाई तवे तो भईले रब के जा बता रहो जाई तवे में अरे

0: भोजपुरी आवाज, भोजपुरी संस्कृति और ये भोजपुरिया सबके साथ भोजपुरिया एफ एम 92.8 MHz।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बा एकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, ये सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमाक्यूल, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमाक्यूल।
7: गुजरात ग्रोमेट, गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्यूल।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोड़ भ गेल।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई त गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: वो किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कलार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 98023 10555 और 98023 10888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550 36867, 98013 65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013 65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
8: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तारखाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियरा गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाय कर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथ ही अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेड, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथ बा स्टोमाक्यूल, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमाक्यूल।
7: गुजरात क्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्यूल।
10: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भ गेल छी।

0: आब हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तऽ गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सांवला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: ए चाचा जी, राउर लाठी हेने बाटे आ खोजा तानी हो ने हैली रोवा अपन लाठी।
4: अरे देख न बबी, याद से कुछ लगते नहीं छे, भगवान तोहरा सदा खुश रखे।
3: चली चाचा जी, रोरा के ले चला तानी। राम कुमार महावीर प्रसाद केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में।
5: ई हॉस्पिटल के सेवा सब
3: हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज, जल बिंदु के संपूर्ण इलाज,
5: बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़त त समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा,
3: कॉर्निया के संपूर्ण इलाज,
5: बच्चा के आँख के संपूर्ण इलाज।
3: नोट, कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिले।
5: आँख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज।
6: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98550368667, 98013-6511, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 98013-6511। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।
7: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

0: अगर आप भी चाहते हैं कि माँ जानकी सीरीज का वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।
1: माँ जानकी सीरीज प्रेजेंट्स।

0: सुन्दै रहो, सुनाते रहो।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु छिनताई और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का भयकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टोनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: अरे वाह भौजी, अरे ई की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोर भ गेल।

0: आ हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: ए लक्ष्मीनिया बोलत काहे नै कसन, काथी भइल बा?
4: ए रामू भैया, राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
3: सुनो बबी, देर ना करो, इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी यहाँ के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी। और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बड़न, तथा यहाँ दोनों आदमी मिल के इस सब बीमारी के उचित इलाज, उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले यह बीमारी भइल रहे, लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
5: उठाओ सर, इनका के जल्दी ले चला मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
4: जी हाँ, यहाँ लकवा, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, मिर्गी के इलाज, दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर, टीबी तथा

0: इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलतापूर्वक होला।
1: संपर्क हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
2: डॉक्टर मोबिन हाशमी, मोबाइल नंबर 7290955466, 7262523, 58579 आ 98525868646।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9850036867, 9813065011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9813065011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ। रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास, परसा नेपाल।
4: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरिया FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वरुणालय परात्पर पर ब्रह्म, श्री कृष्ण की वांगमय छवि श्रीमद् भागवत महापुराण एवं कथा रसिक श्री हनुमंतलाल जी महाराज, परम पावनी मंगलमय बेला कार्यक्रम सत्संग प्रभात में आप सबों का ढेर सारा स्वागत है। मैं आप लोगों का स्नेही जितेंद्र पराशर और अभी आप रेडियो भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज के तरंग के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं कार्यक्रम सत्संग प्रभात को। ईश्वर की असीम अनुकंपा जीव के ऊपर बनी रहे, प्रभु से यही विनती, प्रभु से यही प्रार्थना है।

देवहूति माता ने भगवान से पुनः एक प्रश्न किया। भगवान इनके साक्षात पुत्र बन करके आए, कपिल जी महाराज। भगवान से इन्होंने मन के बारे में पूछा, ढेर सारी बात बताए। अब प्रश्न कर रही हैं, प्रकृति और पुरुष अलग कैसे? एक प्रश्न चिन्ह इन्होंने खड़ा किया, प्रकृति और पुरुष अलग कैसे? इसी के लिए भगवान इसका उत्तर देते हैं।

0: गमे
1: हे माता आत्मज्ञान से संशय रहित होकर के धीर पुरुष यहां पर सरलता से वह स्थान पता है जहां लिंग शरीर का नाश होने पर भी योगी लोग जाकर के वहां से फिर लौट करके नहीं आते, ये सबको पता है कि संसार में आए, इतने सुंदर तन को धारण किए, समय समय से इस शरीर को अच्छा से सफाई किए, मन की भी सफाई किए, लेकिन हम अपने मन को ईश्वर में, ईश्वर के चिंतन में नहीं लगाए तो पुनः इस जीव को इस संसार में आना संभव है, आता ही है। लेकिन योगी लोग अपने आत्म को परमात्मा में लगा करके जीवन को सार्थक बना देते। कैसे? यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद पुनः वापस नहीं आया जाता। इस संसार के चक्कर से फिर इस जीव छूट जाता है, कौन? योगी लोग। वहां जाने के बाद फिर लौटते नहीं। योग साधना के माध्यम से अहर्निश प्रभु का चिंतन करते, प्रभु का स्मरण करते और समाधि अवस्था में जाकर के और परम तत्व को प्राप्त कर लेते। यही तो अष्टांग योग के बारे में परमात्मा ने बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। परमात्म तत्व को प्राप्त करने हेतु ये आठ जो समाधि के अंग है उसे अपने जीवन में अपनाया जाए। गीता में भी यही भाव आया, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, यानी जहां जाने के बाद हे माता मुझ में मन लगाने वाला, आत्मानंद में मग्न रहने वाला तत्वज्ञानी पुरुष का प्रकृति और विषय कुछ भी उपकार नहीं कर सकते। ये शरीर है, अज्ञानी जीव को जीव के अंतिम क्षणों में धर्म करने की याद आती, लेकिन शरीर के अंगों को शिथिल हो जाने के कारण पश्चाताप के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगता। ये कहते हैं ना कि आज क्यों भजन करें, आज क्यों सत्संग करें, कल कर लिया जाएगा, परसों कर लिया जाएगा, इतने दिन अभी बीते तो है नहीं, अभी तो ढेर सारे दिन शेष बचे हुए हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आने वाले दिन में कर लेंगे। लेकिन एक बताओ, कल परसों को किसी ने देखा है क्या? वर्तमान को सुदृढ़ रखा जाए, जीवन पावन हो जाएगा, जीवन कृतार्थ हो जाएगा, इसमें कतई संशय नहीं है। इसी के लिए भगवान कहते हैं कि अज्ञानी लोग क्या करते, इतने सुंदर पावन शरीर मिला और इसमें भजन सत्संग कीर्तन नहीं करते और अंततो गत्वा पश्चाताप के अलावा कुछ रह नहीं पाता। क्यों? क्योंकि मुख में जो दांत थे वो भी टूट गए, शरीर शिथिल हो गया, नेत्रों की जो रोशनी थी समाप्त हो गई, अब एक आसन पे एक घंटे तक भी अच्छे से नहीं बैठ पाएंगे। अब विचार करिए, उस समय में आप भजन का खाक करेंगे? भजन तो उस समय में नहीं हो पाएगा जिस समय में आपको भजन करना चाहिए था, कीर्तन करना चाहिए था, नाम जप करना चाहिए था, उस समय में आपने नहीं किया, अब पश्चाताप करके क्या करोगे? भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोग पश्चाताप के अलावा कुछ करते ही नहीं, बस पश्चाताप ही हाथ लग जाता है अंततो गत्वा। इसी के लिए कह रहे हैं अब

अरे अब याद करके ही क्या, जब आपका शरीर ही शांत और शिथिल हो गया। कितने योनि में भ्रमण करने के पश्चात ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है, कितने योनि में भ्रमण करने के पश्चात। एक बात बताऊं, हर एक जीव को यही लगता है कुछ भी नहीं, वो मिल जाता तो हम ऐसे कर लेते, वो मिल जाता तो ऐसे, यानी कि इस जीव को तृष्णा बनी रहती है, अहर्निश तृष्णा इस जीव के अंदर बनी रहती है। इससे थोड़ा आनंद नहीं आया, थोड़ा वो मिल जाता बड़े आनंदित हो, वो भी मिल गया, यानी मृग तृष्णा के भांति ये जीव अहर्निश उस वस्तु के लिए दौड़ता है जो कोई काम के लायक नहीं है, उस माया में भटकता जो कोई काम के लायक नहीं है। दुनिया के झंझट में खोते ना ये जीवन, एक दिन भी किया होता कुछ करके जिया होता, संसार की राहों में क्यों भटके फिरते हो, जाना है इस जग से यहां जाना लिया होता, उस मुरली वाले ने नाखों को उबारा है, यदि छोड़ के ये ममता कुछ यतन किया होता, उस मुरली वाले ने लाखों को उबारा है लेकिन समय नहीं मिल पाया महाराज, क्या करें, भजन करने का समय नहीं, चिंतन करने का समय नहीं, इतने समय भरे पड़े हैं लेकिन फिर भी समय नहीं, क्या किया जाए। इसी के लिए तो कह रहे हैं, यदि छोड़ के ये ममता कुछ यतन किया होता, इस ममत्व को छोड़ करके कुछ यत्न किए होते, प्रयत्न किए होते तो जीवन सार्थक बन जाया करता, लेकिन समय नहीं था। अंततो गत्वा ये पश्चाताप, मुझे तो जीवन में ये कर लेना चाहिए था, मुझे जीवन में ये कर लेना चाहिए था, मैंने किया नहीं, अब अंत में पश्चाताप करके क्या होगा। जब चिड़िया चुग गई खेत, जो बीज आपने डाला चिड़िया आकर के चुग गई, फिर पश्चाताप करके क्या करोगे। जिस समय में आपको जिस समय की पहचान करना चाहिए था उस समय को तो आपने अपने जीवन में गंवा दिया, समाप्त कर दिया, फिर पश्चाताप करके कोई लाभ नहीं है। कपिल भगवान कह रहे हैं कि हे माता, यथाशक्ति स्वधर्म का आचरण जो मिले उसी में संतोष, भगवान के चरणों की पूजा, एकांत स्थान का सेवन, शुद्ध और मिताहार जिसमें चोरी न करना, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, तप, शौच, वेद अध्ययन, भगवान की पूजा से निंदित कर्मों पर जाने वाले मन को, प्राण वायु को जीत करके निर्लेप होकर के बुद्धि को स्थिर करना चाहिए। अब ध्यान के बारे में बता रहे हैं।

मैंने पूर्व में बताया पूरक कुंभक और रेचक। जैसे प्राणायाम करते हैं तो उसमें पूरक कुंभक और रेचक के माध्यम से इसे अच्छे से उस प्राणायाम को करना चाहिए। कह रहे हैं ये मन जो है बड़ा चंचल है, बड़ा चंचल है, एक जगहों पे स्थिर होना इसके लिए बड़ा मुश्किल है। स्थिर मन वाले का कोई कुछ भी उपकार नहीं कर सकता। मन यदि आपका स्थिर हो गया, यदि कोई आकर के आपको कोई बोल भी देता ना तो उसको आप सहन कर लेते। जीवन में उग्रता का कारण यही बनता है, जीवन में अशांति का कारण यही बनता है कि मेरे कहे अनुसार, मेरे मन के कहे के अनुसार लोग क्यों नहीं मानते। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इस मन के ऊपर खड़ा कर दिया जिसके कारण इस जीव को दुख है, दर्द है, कष्ट है, परेशानी है और उसी में अपने जीवन को व्यतीत, इसी जीवन में बस कष्ट और परेशानी को भुगत रहा है। लेकिन स्थिर मन वाले के ऊपर यदि कोई लाख भी प्रयत्न करे इसके चंचल मन को मैं डुला दूं, फिर वो डोलता नहीं। अज्ञानी जीव को जीव के अंतिम क्षणों में धर्म करने को याद आती। अब समय ही व्यतीत हो गया, अज्ञानी लोग करते क्या है, आज कर लेंगे परसों कर लेंगे। रे महाराज, करते करते करते करते उस काल के मुख तक जाते हैं ना, तब पश्चाताप करते हैं कि इतने बड़े जीवन मुझे मिला, मैंने कुछ भी नहीं कर पाया। क्यों नहीं किया, मुझे करना चाहिए था। लेकिन अज्ञानी जीव पश्चाताप के सिवा और कुछ करता ही नहीं। लेकिन शरीर के अंगों को शिथिल हो जाने के पश्चाताप के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगता। यही तो भगवान गीता में कह रहे हैं।

भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, जैसे किसी दीपक को आप, वायु तो सब जगह पे है, सब जगह पे विराजमान है, लेकिन वायु के वेग के ऊपर ये निर्भर करता है। आप यदि वायु का वेग नहीं है, वायु का तेज नहीं है, हवा कस के चल नहीं रहा है, उस समय में आप दिया को बाहर भी जला करके रख देते, दिया टस से मस नहीं होता, हिलता भी नहीं। लेकिन वही बाहर में रखा हुआ दिया जब हवा चलने लगे तो उस समय में क्या होता, लौ इधर से उधर होता है और बुझने का भी संभावनाएं अधिक हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से कह रहे हैं, मन भी वैसा ही है। हमने वायु रूपी संसार के विषय वस्तुओं को इतने शिथिल कर दिया कि मेरा मन कभी इधर से उधर कभी डोलता नहीं। लेकिन वायु यदि चले तो उस दीपक के लौ को इधर उधर कर सकता है। इसी के लिए स्थिर मन वाले को सदैव स्थिर रह करके परमात्मा का भजन करना चाहिए।

भगवान कह रहे हैं कि हे माता जी, प्राणायाम आदि उपायों से जब मन स्थिर हो जाए तब नासिका के अग्र भाव पर दृष्टि रख करके भगवान की मूर्ति का स्थान ध्यान करना चाहिए। यानी मन स्थिर नहीं होता तो पहला कार्य है कि ध्यान किया जाए। जिस शरीर को लेकर के इतनी बेचैन रखते, कुछ समय तो अपने घर में भी निकाल करके और ध्यान करना चाहिए, मन स्थिर हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। प्रथम भगवान के चरणारविंद का ध्यान, फिर नाभि सरोवर का, फिर कांति युक्त हार का, लक्ष्मी के वास वक्षस्थल का, कौस्तुभ मणि का, युक्त कंठ का, बाजूबंद से सुशोभित भुजाओं का, शंख चक्र में हाथ में धारण किए हुए, यानी पूरे स्वरूप परमात्मा के छवि को अपने हृदय में बसा करके ध्यान करना चाहिए। जब इस प्रकार ध्यान लगा करके प्राणी मुझे अपने अंदर और बाहर सर्वत्र देखने लगता है, तब वह मुझे सर्वत्र देखता है, सब कुछ मुझ में ही देखता है। भावाई

सिया राम मैं सब जग जानी। भाव जब जीव के अंदर इस प्रकार से आ जाता ना, तो कण कण में हरि का दर्शन करना प्रारंभ कर देता। और भगवान कहा नहीं, सब जगह पे है। जब उपद्रव हुआ, सब लोगों ने कहा परमात्मा कहां मिलेंगे, भगवान कहां मिलेंगे। उस समय में भगवान शिव भी कह रहे हैं,

कहा कि भगवान कहां नहीं है, भगवान तो सर्वत्र स्थान पे हैं। यदि हमारे अंदर उप्रेम हो जाए, वात्सल्य हो जाए, प्रभु के प्रति समर्पण हो जाए, प्रभु वहीं पे साक्षात्कार हो जाते हैं, प्रभु वहीं पे दर्शन दे देते हैं। इसी के लिए हरि कहां नहीं है, हरि तो सब जगह पे हैं, हरि तो सब स्थान पे हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। यहां पे भी भगवान कह रहे हैं कि जब जीव अपने अंदर जब ध्यान करना प्रारंभ कर दे, मेरे छवि को स्मरण में आना प्रारंभ कर दे, तो एक तो अंदर जाकर के मुझे विराजमान कराया, जब अंदर ही बैठे तो फिर संसार में सब जगह पे भगवान ही भगवान दिखाई देते, उस जीव का कल्याण हो जाता है। संसार में पृथक कोई नहीं है। हे माता, जिनके मन में श्री भगवान और गुरु के प्रति परम श्रद्धा होती है, उसमें बौद्धिक ज्ञान का प्रकाश स्वतः हो जाता है और भक्त अपने को भगवान में समर्पित कर देता है। और भक्त जो है भगवान को समर्पित कर देता है, एकदम पूर्ण रूपे ने समर्पित कर देता। क्यों? एक संबंध बना लेता, परमात्मा से संबंध बना लेता। और संबंध इस प्रकार से बनाता है कि कहा नहीं जा सकता। बड़े प्रेम भाव से इस चीज को लेकर के दर्शा रहे हैं कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। इस भाव से यदि लगा जाए तो जीव कृतार्थ हो जाता है, जीव पावन हो जाता है। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, तुम भक्तन के हितकारी, हम आए शरण तुम्हारी, काटो जन्म मरण के फेरे।

मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल शामुरिया मेरे। कार्यक्रम सत्संग प्रभात रेडियो भोजपुरी एफएम 92.1 का 8 मेगाहर्ट्ज के तरंग के माध्यम से आप सब मिलकर के बड़े आनंद के साथ श्रवण कर रहे हैं। प्रभु की असीम अनुकंपा बनी रहे, प्रभु की कृपा बनी रहे। बड़े सुंदर पावन भक्ति के बारे में माता रानी यानी देवहूति मैया प्रश्न कर रही है, भक्ति क्या है, कैसे किया जाए, किस प्रकार से किया जाए, भगवान किस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। जीव के गर्भ में वास का वर्णन करते हैं कि जीव किस प्रकार से इस गर्भ में, माँ के गर्भ में आता है, इसके बारे में पूछते हैं। फिर उसके बाद मनुकन्याओं का वंश का वर्णन करते हैं। कार्यक्रम सत्संग प्रभात रेडियो भोजपुरी एफएम 92.1 का 8 मेगाहर्ट्ज के तरंग के माध्यम से आप सब मिलकर के श्रवण करते रहिए। कार्यक्रम सत्संग प्रभात, इस कार्यक्रम को आप श्रवण कर रहे हैं। दीवाना पान भंडार गम्हरिया नहर चौक से श्याम सुंदर बैठा जी इस कार्यक्रम को रसपान कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। आश मोहम्मद अंसारी जी इस कार्यक्रम को आप रामपुर टुकनी से श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। पूजा पराशर जी भी सुन रही हैं। पीयूष कुमार पांडे जी भी श्रवण कर रहे हैं। पूजा जी बलिरामपुर से इस कार्यक्रम को रसपान कर रही हैं। उसी क्रम में है राधे राधे गुरुजी व नेपाल बिहार रेडियो श्रोता संघ वैकुंठ धाम बिहार से संजय शाह जी के साथ इस कार्यक्रम को रसपान कर रहे हैं। वैकुंठ बाबा की कृपा, बहुत बहुत धन्यवाद लिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, लिख करके भेजे उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। अभिषेक कुमार जी लिख रहे हैं हर हर महादेव गोपालगंज से, इस कार्यक्रम को आप रसपान कर रहे हैं। कार्यक्रम सत्संग प्रभात श्रवण करके साथ दिए उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। मुझे आशा और विश्वास है कि इस कार्यक्रम को आपको अच्छा लगा हो, जरूर इसको शेयर जरूर किया जाए, लोगों को जरूर जुड़ा जाए। इसी शुभ संदेशों के साथ आने वाले सत्र में मैं जितेंद्र पाराशर आप सबके समक्ष जरूर उपस्थित होंगे। कार्यक्रम सत्संग प्रभात सुनकर के साथ दिए उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। आने वाले सत्र में पुनः

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
3: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
0: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
3: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड मुख्तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
4: डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाएकर इलाज?
5: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में सहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथ ही अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
6: जी गुजरात ग्रोमेड विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
7: जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्यू जॉन गैस्ट्रिक अल्सर हाइपर एसिड

0: के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला।
1: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्योर।
2: गुजरात क्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्योर।
3: ए चाचा जी, राउर लाठी है ने बाटे आ खोज तानी हो ने हैली रोवा अपन लाठी।
4: अरे देख न बबी, याद से कुछ लगते नहीं छे, भगवान तोहरा सदा खुश रखे।
3: चली चाचा जी, रोरा के ले चला तानी। राम कुमार महावीर प्रसाद केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में।
5: ई हॉस्पिटल के सेवा सब
3: हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज, जल बिंदु के संपूर्ण इलाज,
5: बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़ता तो समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा।
3: कॉर्निया के संपूर्ण इलाज,
5: बच्चा के आँख के संपूर्ण इलाज।
3: नोट, कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिली।
5: आँख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज।
6: ए लक्ष्मीनिया, बोलत काहे नहीं कसन, काथी भइल बा?
7: ए रामू भैया, राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
6: सुन बबी, देर ना करो, इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी यहाँ के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी। और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बड़न, तथा यहाँ दोनों आदमी मिलके इस सब बीमारी के उचित इलाज, उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले यह बीमारी भइल रहे, लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
8: उठावा सा, इनका के जल्दी ले चला मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
7: जी हाँ, यहाँ लकवा, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, मिर्गी के इलाज, दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर, टीबी तथा इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलता पूर्वक होला।
6: संपर्क हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
9: डॉक्टर मोबिन हाशमी, मोबाइल नंबर 7091-55466, 62-5523, 58-579 आ 98-525-68-46।
10: अरे वाह भौजी, अरे ई की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोर भ गेल।

0: कटिया क्रीम नहीं यूज करी छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छे, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुंह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। त आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: अब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जात आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट्स बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कोलार्क रिसोर्ट्स बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसोर्ट्स में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: कोलार्क रिसोर्ट्स आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9850-36867, 9803-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9803-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभचिंतक हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल
8: भोजपुरिया 92.8 FM।

भक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम सत्संग प्रभात, सत्संग प्रभात, सत्य पे निष्ठा कलयुग का पतवार, सब करेगा वही जो है पालनहार, मर्यादा को सिखाए अधर्म पर पहुँचे आघात, परम निष्ठा से सुनो यही है कार्यक्रम सत्संग प्रभात। जितेंद्र पारासर के साथ में रेडियो भोजपुरी FM 92.8 MHz में शिव मेरी पूजा, शिव प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, सायं 7 बजे से 8 बजे तक कार्यक्रम सत्संग प्रभात, सत्संग प्रभात।

0: खून दान ही जीवन दान है। टाइम से भोजपुरिया FM 92.8 MHz में
1: अभी संजिया के 8 बजे
2: भोजपुरी भाषा संस्कृति के पहचान भोजपुरिया FM 92.8 MHz पर अभी रहुआ सुनतानी भोजपुरी निर्गुण।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 90971602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाँ तो झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथ बा स्टोमाक्यूल, जौन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आव, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
5: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमाक्यूल।
7: गुजरात ग्रोमेट, गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्यूल।
9: ए चाचा जी, राउर लाठी है ने बाटे आ खोजा तानी हो ने हैली रोवा अपन लाठी।
10: अरे देख ना बाबी, यार से कुछ लगते नहीं छे, भगवान तो हटा सदा खुश रखे।
9: चली चाचा जी, रोरा के ले चला तानी। राम कुमार महावीर प्रसाद केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में,
11: ये हॉस्पिटल के सेवा सब है,
9: हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज, जल बिंदु के संपूर्ण इलाज,
11: बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़ता तो समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा,
9: कॉर्निया के संपूर्ण इलाज,
11: बच्चा के आँख के संपूर्ण इलाज।
9: नोट, कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिली।
11: आँख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केडिया आँख अस्पताल परवानीपुर बीरगंज।
12: अरे वाह भौजी, अरे ये की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, गोड़ भर

0: आब हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँ के चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन, सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। तो आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: हो किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, कलार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: क्लार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
7: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9850-36867, 9803-65011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9803-65011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
0: भोजपुरी भाषा संस्कृति के पहचान भोजपुरिया FM 92.8 MHz पर अभी रहुआ सुनतानी भोजपुरी निर्गुण।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बेलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का भाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आजवे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी हेमोडेक्स।
8: जी अब अपने के साथवा स्टोमा क्यूर, जॉन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान आ पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला,
9: पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, इहा स्टोमा क्यूर।
7: गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्यूर।
10: ए लक्ष्मीनिया बोलत काहे नहीं कसन, काथी भइल बा?
11: ए रामू भैया, राते से बाबूजी के बोली बंद हो गइल बा, हाथ पैर भी सुन हो गइल बा, कहाँ इलाज कराई?
10: सुनो बबी, देर ना करो, इनका के जल्दी लेके चल जा मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी के हॉस्पिटल में। हमनी यहाँ के बहुत लोग इनका से इलाज करा के ठीक भइल बानी, और उनकर बेटा डॉक्टर मोहसिन हाशमी MBBS MD फेलोशिप न्यूरो के पढ़ाई पढ़ले बाड़न, तथा यहाँ दोनों आदमी मिल के इस सब बीमारी के उचित इलाज, उत्तम व्यवस्था तथा कम पैसा में करेलन। हमरो 2 साल पहले यह बीमारी भइल रहे, लेकिन आज हम घर गृहस्थी के सारा काम कर रहल बानी।
12: उठाओ सर, इनका के जल्दी ले चला मोतिहारी में डॉक्टर मोबिन हाशमी एवं डॉक्टर मोहसिन हाशमी के लगे।
11: जी हाँ, यहाँ लकवा, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, माइग्रेन, मिर्गी के इलाज, दिमाग एवं स्पाइन के ट्यूमर, टीबी तथा इन्फेक्शन आदि के इलाज सफलता पूर्वक होला।
10: संपर्क हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, स्टेट बैंक बाजार ब्रांच के सामने मोतिहारी। संपर्क
13: डॉक्टर मोबिन हाशमी, मोबाइल नंबर 7201955466, 6262523, 58579 आ 98525868646।
14: अरे वाह भौजी, अरे ई की चेहरा पर गजब के चमक, पहिने कारी लगे छन, हो गोर भ गेल।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात, आ तहिना मुँह में रहल दाग झुर्री सब सब दूर करत, आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरी गोरी क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत, आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 9850 36 867, 9803 65 011, वैसा ही व्हाट्सएप नंबर 9803 65 011। अपने के बिजनेस तथा व्यापार के सहयात्री एवं शुभ चिंतक, हर पल अपने के साथ रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz, आदर्श नगर बीरगंज टाउन हॉल गेट के पास परसा नेपाल।
4: भोजपुरी भाषा संस्कृति के पहचान भोजपुरिया FM 92.8 MHz पर अभी रहुआ सुनतानी भोजपुरी निर्गुण।

0: अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी एफएम 92.8।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता प्रत्येक गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब मुरारी जी के मकान में,
4: प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार
1: रक्सौल डंकर हॉस्पिटल से पूरब मिश्रा गली से पूरब वाली गली में त्यागी जी के अपने मकान में, प्रत्येक मंगलवार बेतिया उर्वशी सिनेमा से पूरब सेंट्रल बैंक के बगल में मानवर शोरूम के पास अजय झा जी के मकान में, प्रत्येक बुधवार मोतिहारी बिलही देवी मंदिर से पूरब राजेश्वरी होटल के सामने आनंद होटल के नीचे, प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में,
4: प्रत्येक बुधवार नरकटियागंज रजिस्ट्री कचहरी रोड तार खाना के बगल में सरबदेव कुशवाहा के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
5: डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियर आ गई बा, हाथों झनझनाता, का बाएकर इलाज?
6: देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी।
7: जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम गुजरात ग्रोमेट के।

0: हम फोकटिया क्रीम नहीं यूज करै छी, ई तो गोरी गोरी क्रीम के जादू छै, बुझलियै ने?
1: जी हाँ, गोरी गोरी क्रीम जे देत अहाँके चेहरा पर गजब सन चमक, चेहरा के राखत गोरापन सावला हटात आ तहिना मुँह में रहल दाग धुरी सब सब दूर करत आ आँख के नीचा में रहल कालापन सेहो दूर भगात। आओ यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में उपलब्ध अछि गोरी गोरी क्रीम।
2: आब हरेक गोरे गोरे क्रीम पर एकटा निश्चित उपहार देल जायत आ नकली सँ सावधान रहब।
0: तहन आब दोसर नहि, बस गोरी गोरी क्रीम।
1: निर्माता सारा भाई।
3: किसी डिस्को में जाए जाए, किसी होटल में जाए जाए।
4: कोलार्क रिसोर्ट बीरगंज 14 बहुअरी।
5: जी आप सही सुने, क्लार्क रिसर्च बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसर्च में अनेकों पार्टी हॉल जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते हैं।
4: खास तौर पे बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टी एंड एनिवर्सरी पार्टी और साथ ही शादियों के लिए खास रूप से अलग अलग पैकेज तैयार किया गया है।
5: क्लार्क रिसर्च आपको अनेकों तरह के व्यंजन परोसने के लिए तैयार है, जिसमें खास करके चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और रीजनल फूड अवेलेबल है। पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ स्वादिष्ट खाना के साथ आपको सर्विस देने को तैयार है।
4: आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें।
6: संपर्क मोबाइल नंबर 9803-10555 और 9803-10888।
7: भोजपुरी भाषा संस्कृति के पहचान, भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी रहुआ सुनतानी भोजपुरी निर्गुण।

0: रक्तदान जीवन दान टाइम चेक भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ज में
1: अभी रात के 9 बजे।
2: नमस्ते, आप सुन रहे हो भोजपुरी FM 92.8। सुनते रहो, सुनाते रहो।

भक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम सत्संग प्रभात। सत्संग प्रभात, सत्य पे निष्ठा कलयुग का पतवार, सब करेगा वही जो है पालनहार। मर्यादा को सिखाए अधर्म पर पहुँचे आघात, परम निष्ठा से सुनो यही है कार्यक्रम सत्संग प्रभात। जितेंद्र पाराश्र के साथ में रेडियो भोजपुरी FM 92.8 MHz में प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, सायं 7 बजे से 8 बजे तक कार्यक्रम सत्संग प्रभात। सत्संग प्रभात।